हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, उधर दारा हो, उधर दारा।

0: अभी बुधोपिया जीए हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6 सिंधु जो आवाज।
1: ओ पिता जा पिताई पिता देव से नूर मुझो तो
0: सिंधु जो आवाज बुधंदा रहो।

0: किया है सिंधजी दिल ये मटियारे एफएम 91.6।
1: जिस सुहानी शहर आए खैरुल बशर, फूल खिलने लगे थे हर एक शाख पर, खुशबुओं से फजाएं महकने लगी, बुलबुलें डाली डाली चहकने लगी, उनकी आमद पे सारी बहारें फिदा, पत्ते पत्ते की सदा सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह।

सिंध के हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

مشرب عشق میں میرا سجدہ

0: अपना शहर अपना घर मटियारी और मटियारी की आवाज
1: GFM 91.6
2: जियो सुंदरी।

0: उसकी में जगत पावदर पावदर पावन।
1: अभी बुधोपिया जीए हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6 सिंध जो आवाज
2: जा पिताई पिता ते वसे नूर मुझो तो
1: सिंध जो आवाज बुधंदा रहो।
3: It's 9 a.m. This time check is brought to you by
4: Fakiri Neem Prickly Heat Soap
5: जल्दी एलर्जी और खारिश के लिए मुफीद है।
4: Fakiri Neem Prickly Heat Soap
5: हर अच्छे स्टोर से नाम लेकर तलब कीजिए।
6: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN News
3: brought to you by
1: सोना यूरिया ग्रेनुलर मिट्टी जो
7: चाची कहंदे पी दादे जी जागीर ना है पर आसान जो आहे। नादिर मंगसी चयो आहे त बलोचिस्तान में ॾिसो कहिड़ी सूरत हाल आहे, छा साॻी सूरत हाल सिंध में पैदा करणु चाहियो था। को बि गैरतमंद सिंधी सिंध जो विरांगो क़बूल न कंदो। करोड़नि सिंधियुनि खे मारण खां अॻु सिंध खे नथो विरहाए सघजे। मोहम्मद बख्श महर, ग़ुलाम क़ादिर चांडियो, साजिद जोखियो, इमदाद पिताफ़ी, मारे राशदी ऐं शाज़िया करीम चयो आहे त पाकिस्तान जो बुनियाद सिंध ऐं सिंध जो बुनियाद पाकिस्तान आहे। ॿिन्ही खे हिक ॿिए खां धार नथो करे सघिजे। सिंध असां लाइ माउ जीअं आहे, माउ खे टुकड़ा नाहे कयो वेंदो। धरती ख़ातिर बचो बचो क़ुर्बानी ॾियण लाइ तयार आहे। जाम मेहताब डहर, सुहेल सयाल, आसिफ मूसा, आसिफ ख़ान, हिना दस्तगीर ऐं हीर सोहो बहस में हिसो वठंदे चयो त सिंध खे अमर मञूं था ऐं हुन जी वहदत ऐं सालमियत जो तहफ़ुज़ बि करियूं था। सिंध सां मोहबत

यूनिट्स के वक्त की जरूरत करार दई छो। कुरतन लेन है इंतजामी यूनिट्स की गाल सिंध के विरहण लाइ न पई कई वे इंतजामी मामलों में बेहतरी लाइ इंतजामी यूनिट ठाण घुर्ज। जमाल अहमद है कराची के मसलन बाबत आवाज उथण से नाराज थियण बदर जमीनी हकीकतन से गालण घुर्जे। कराची में रियासत खिलाफ गालू थी रही तो उन खिलाफ FIR केर दाखिल कन्द। फरहान अंसारी सिंध इंतजामी यूनिट्स बाबत उथंदड़ आवाजन के नजरअंदाज कर बदर उन सबबन से बहस कयो वे। सिंध से मोहब्बत या पाकिस्तानी हुजन जो कंखे सर्टिफिकेट देने की जरूरत ना। जमात इस्लामी के मेंबर्स मोहम्मद फारूक है सिंध असांजी धरती है तो कराची भी असांजो शहर है। कराची से मोहब्बत कंदड़ कंखे भी वजाहत देने या पाबंद ना।

थियनि था। मुआहिदे बाबति सालसी अदालत जो फ़ैसिलो वाज़े आहे। हिकु तरफ़ी क़दम सां मुआहिदो ख़तम नथो थी सघे। भारत खे सफ़ारती मुआहिदे समेत हर हंधि शर्मिंदगीअ खे मुंहुं ॾियणो पियो। दिफ़ा वारे वज़ीर ख़्वाजा आसिफ़ चयो आहे त सिंतास मुआहिदे में काम ऐं फुल स्टाफ समेत का बि तब्दीली ॿिनि धुरियुनि जे राज़बे सां थी सघे थी। वफ़ाक़ी काबीना इस्लामाबाद में मकानी हुकूमतनि जे निज़ाम जी मंज़ूरी ॾेई छॾी। ज़रियनि मूजिबि इस्लामाबाद मकानी हुकूमतनि बाबति बिल घरू मामलनि वारे स्टैंडिंग कमेटीअ में मंज़ूरी लाइ पेश थींदो। इस्लामाबाद मकानी हुकूमतनि जो निज़ाम टिनि तकनि ते ॿधल हूंदो। काउंसिल मेंबरनि में जनरल काउंसिलर औरतनि ऐं अकलियतनि जी नुमाइंदगी खे शामिल हूंदी। कमेटीअ मां मंज़ूरी खां पोइ बिल सेनेट ऐं क़ौमी असेंबली में मंज़ूरी लाइ पेश कयो वेंदो। हुकूमत पेट्रोल ऐं डीज़ल जे अघनि में हिकु भेरो ॿीहर वाध करे छॾी। पेट्रोल ॿ रुपया उणटीह पैसा फी लीटर महांगो थियण खां पोइ नओ अघु 346 रुपया 16 पैसा मुक़ररु। डीज़ल 1 रुपयो 11 पैसा फी लीटर महांगो थियण खां पोइ नओ अघु 372 रुपया 3 पैसा थी वियो। पेट्रोलियम डीज़ल पारां 3 सेप्टेम्बर लाइ पेट्रोल ऐं डीज़ल जे अघनि जो नोटिफिकेशन जारी।

वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ जो सिहत जे शोबे में सुधारण वारो अमल तेज करण जी हिदायत। वज़ीर-ए-आज़म जी सदारत हेठ इजलास में सिहत वारे वज़ीर मुस्तफ़ा कमाल अहद खान चीमा ऐं ॿियनि जी शिरकत। शहबाज शरीफ चयो आहे त मुजुर्माणी गफ़लत जी ज़िमेवारनि खे रियायत न ॾिनी वेंदी। सिहत वारे वज़ीर ऐं सेक्रेटरी पंहिंजी निगरानीअ में इस्पताल जी बहितरी लाइ क़दमनि ते अमल कराइनि ऐं पिंज इस्पताल में इलाज सहूलियतुनि जी बहितरी ऐं हिफ़ाज़ती क़दम यकीनी बणाया वञनि। पिशावर में सीटीडी जी कार्रवाई, चार मुबैना दहशतगर्द मारिजी विया। इलाइक़े में कार्रवाई दौरान मुबैना फायरिंग जी ॾे वठि। सीटीडी मूजिबि मारिजी वियल दहशतगर्दनि वटां सीटीएमएस जीएस पिस्टल, मैगज़ीन ऐं कारतूस हथ आया। हिकु दहशतगर्द जे खीसे मां अफ़गान सुञाणप कार्ड मिलियो, जंहिं जो तालुक़ कुनड़ आहे। मारिजी वियल दहशतगर्दनि जे इस्तेमाल हेठि ॿ मोटरसाइकिलूं बि कब्ज़े में वरितियूं वयूं।

0: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: मटियारी के हो तो आवाज भी मटियारी की है, सुनते रहो GAFM 91.6।
2: पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फास्फोरस की कमी का शिकार हैं, इसीलिए सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ। इसमें मौजूद फास्फोरस दे जड़ों की बढ़ोतरी और फैलाव में इजाफा और सल्फर नाइट्रोजन की आफादियत को बढ़ाए, जिससे फसल को इब्तदाई मरहले से ही जरूरी गजाई अज्जा मिले। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा।

0: पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फास्फोरस की कमी का शिकार हैं, इसीलिए सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ। इसमें मौजूद फास्फोरस दे जड़ों की बढ़ोतरी और फैलाव में इजाफा और सल्फर नाइट्रोजन की आफादियत को बढ़ाए, जिससे फसल को इब्तदाई मरहले से ही जरूरी गजाई अज्जा मिले। इसके हर दाने में तीनों सा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे, जिससे हो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा। 3 की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले।
1: आप सुन रहे हैं GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

रतमन सिंधी सिंध जो विरांगो कबूल न कंदो, करोड़े सिंधियुनि खे मारण खां अॻु सिंध खे नथो विराए सघिजे। मोहम्मद बख्श महर, गुलाम कादिर चांडो, साजिद जो इमदाद पिताफ़ी, मारी राशदी ऐं शाज़िया करीम चयो त पाकिस्तान जो बुनियाद सिंध ऐं सिंध जो बुनियाद पाकिस्तान आहे। ॿिन्ही खे हिक ॿिए खां धार नथो करे सघिजे। सिंध असां लाइ माउ जीअं आहे, माउ खे टुकड़ा नाहे कयो वेंदो। धरती ख़ातिर बचो बचो क़ुर्बानी ॾियण लाइ तयार आहे। जाम मेहताब लहर, सुहेल सियाल, बुरहान खान चांडियो, आसिफ मूसा, आसिफ खान, हिना दस्तगीर ऐं हीर सो बेस में हिसो वठंदे चयो त सिंध खे अमर मञूं था त हुन जी

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज,
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

सिंध के हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बुधंदा रहो।

0: अपना शहर अपना घर मटियारी और मटियारी की आवाज
1: GFM 91.6।
2: It's 11 AM. This time check is brought to you by
3: फकीरी एनल्जेसिक क्रीम, दर्द सोजन वरम फौरी खत्म। आज ही करीबी स्टोर से नाम लेकर तलब करें।
4: अब आप सुनेंगे जीए

0: FM नेटवर्क पर KTN न्यूज
1: ब्रॉट टू यू बाय
2: सोना यूरिया ग्रैनुलर मिट्टी जो
3: थाणो गोलाखान में सोलंगी मोहल्ले में भित किरण सबब निंड पयल मासूम बार फौत सदमे में ॾाॾी बि हयाती विञाए वेठी भित किरण जे नतीजे में निंड पयल 12 वरियनि जे मासूम अज़रा धीअ गाज़ी सोलंगी फौत थी वई। बारड़े जे फौत थियण जो सदमो बर्दाश्त न कंदे संदसि ॾाॾी जांदुल बि फौत थी वई।
4: सोलर ऐं बैटरी ते डायरेक्ट हले ऐं बाक़ी तमामु

0: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: मटियारी के हो तो आवाज भी मटियारी की है, सुनते रहो GAFM 91.6।
2: अभी बुधोपिया GA हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंधु जो आवाज।
3: ओ पिता जा पिता पिता देव से
2: आवाज बुध।

आप सुन रहे हैं जी ए एफ एम 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: सिंध का हर चप्पा हर गोशा
1: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा
0: GAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: It's 11:30 AM. This time check is brought to you by.
1: अगर खूबसूरती चाहिए तो आर्च अपनाए. आर्च ब्यूटी क्रीम, एलोवेरा और एवोकाडो सिर्फ 3 दिनों में डार्क स्पॉट्स, एक्नी एंड स्कार्स रिड्यूस करके स्किन को बनाए रेडियंट, स्पार्कलिंग और दे शानदार मिरेकल ग्लो. आर्च ब्यूटी क्रीम.
2: पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फास्फोरस की कमी का शिकार हैं, इसीलिए सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ. इसमें मौजूद फास्फोरस दे जड़ों की बढ़ोतरी और फैलाव में इजाफा और सल्फर नाइट्रोजन की अफादियत को बढ़ाए, जिससे फसल को इब्तदाई मरहले से ही जरूरी गजाई अज्जा मिले. इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे, जिससे हो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा. 3 की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले.
3: अभी बुधोपिया जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज.
4: ओ पिता जा पिताई पिता ते वसे नूर मुझो तो
3: सिंध जो आवाज बुधंदा रहो.

पाकिस्तान की शान वादी मेहरान, मेहरान की पहचान, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: अभी बुधोपिया GA हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज।
2: ओ पिता जा पिताई पिता ते वसे नूर मुझो तो
1: सिंध जो आवाज बुधंदा रहो।
3: अपना शहर अपना घर मटियारी और मटियारी की आवाज
0: GFM 91.6।
4: It's 11:45 AM. This time check is brought to you by
5: हम इस्लामिक बैंकिंग के फरोग में अपना फाल किरदार मुसलसल अदा करते रहेंगे। अस्करी बैंक
6: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते।
1: अभी बुधो प्या GA हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज।
2: ओ पिता जा पिताई पिता ते वसे नूर मुझो तो
1: सिंध जो आवाज बुधंदा रहो।

हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, उधर रहो।
1: It's 12 PM. This time check is brought to you by
2: Fakiri Neem Prickly Heat Soap.
3: Jildi allergy aur kharish ke liye mufeed hai.
2: Fakiri Neem Prickly Heat Soap.
3: Har acche store se naam lekar talab kijiye.
4: Ab aap sunenge GAFM Network par KTN News.
5: Brought to you by
6: Sona Urea Granular. Mittiye jo ma.
7: सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमण पारां कराची में हड़ताल दौरान भंडरा वारनि वाकियनि जी मज़म्मत। शर्जील इनाम मेमण चयो आहे त सियासी मक़सदनि लाइ मिल्कियतनि जो नुक़सान करणु शहरनि खे तकलीफ़ पहुचाइणु मज़म्मत जोॻो अमल आहे। एहतियात जे नाले ते शहर खे जड़माल बणाइण जी इजाज़त न ॾिनी वेंदी। ईरान जा कोइत में अमेरिकी फ़ौजी अॾनि ते हमला। कोइती फ़ौज पारां ईरानी मिज़ाइल हमला नाकाम बणाइण जी दावा। ईरानी फ़ौज चयो आहे त कोइत में अमेरिकी फ़ौजी अॾनि खे निशानो बणायो वियो आहे। कोइती फ़ौज चयो आहे त ईरानी मिज़ाइल ऐं ड्रोन्स खे फिज़ा में तबाह कयो वियो आहे।

अमेरिका जो ईरान सां वापार कंदड़ मुल्कन के सख्त पैगाम पाबंदियों लगाने की धमकी भी दई छी। अमेरिकी परदेही वजीर मार्क रूबियो चयो आहे त ईरान के अमेरिकी पाबंदियों का बचण जो जरियो बणजंदड़ मुल्कन ते भी पाबंदियों लगायूं वेंदियूं। ईरानी कौमी सलामती काउंसिल के सरबराह मोहसिन रज़ाई चयो आहे त अमेरिका के हाणे तेहरान की नई हिकमत अमलीअ के मुंह डेणो पवंदो ऐं जहन्नुम जी ऊनाई मां निकरण जो कस न मिलंदो।

लाहौर की अदालत में अदाकारा मोमिना इकबाल के हिरासा करने वाले केस की बुधड़ी एनसीसीआईए एमपीए साकिब संदस जाल सुमेरा के विदोही करार दे छो जांच ऑफिसर पारा रिपोर्ट जांच रिपोर्ट अदालत में पेश अदाकारा मोमिना इकबाल जो साकिब के मुअतल करण जो मुतालबो हिरासा करण जो साबितियों सोशल मीडिया से रखने जो ऐलान।

खानपुर महर भरसां लुन बिरादरी जे ॿिनि धुरनि में जहिड़ो हिकु जणो क़तल, हिकु ज़ख़्मी घोट सूमर मोरे भरसां पुराणे तकरार सां हथियार बंदन फायरिंग करे मौज अली लुंड खे क़तल कयो। मक़तूल जे वारसनि मूजिब अदालत हाज़िरी ते वञण दौरान हथियार बंदन हमिलो कयो, जंहिं जे नतीजे में मौज अली क़तल थी वियो। जवाबदारनि खे गिरफ़्तार कयो वञे। थाणो बुलाखान में सोलंगी मोहले में भित किरण सबब निंड पयल मासूम ॿारणी फोत सदमे में ॾाॾी बि हयाती विञाए वेठी। भित किरण जे नतीजे में निंड पयल 12 वरनि जी मासूम अज़रा धीअ गाज़ी सोलंगी फोत थी वई। ॿारणीअ जे फोत थियण जो सदमो बर्दाश्त न कंदे संदसि ॾाॾी बि फोत थी वई।

कंडियारो भरसां डोडा माइनर ओवरटॉप थियण लॻी त पाणी घरनि में दाख़िल। रहवासियुनि जो एहतिजाज, डोडा माइनर ओवरटॉप थियण सबब कची आबादी जे घरनि में पाणी दाख़िल। रहवासियुनि कोट रोड ते मुज़ाहिरो करे धरणो हो। मुज़ाहिरनि पारां डोडा माइनर जा कपर मज़बूत करण ऐं घरनि में दाख़िल थियल पाणी नेकाल करण जो मुतालबो।

0: एफएल पाइन में जोड़े बोर्ड के पानी में शादी करे छी बोर्ड सबब चर्च पानी हेठ हुजण सबब जोड़ो पानी में गुजरंदे चर्च पहुतो मेहमान भी पानी में शादी में शरीक थे।
1: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
2: मटियारी के हो तो आवाज भी मटियारी की है, सुनते रहो जीए एफएम 91.6।

0: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
1: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
0: जीए FM नेटवर्क,
1: सिंध की आवाज़।

0: It's 12:15 p.m.
1: This time check is brought to you by
2: D Skin Beauty Cream, Asli Glow Har Niya Josho, a product by Biocon International Pakistan.
3: पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फास्फोरस की कमी का शिकार हैं, इसीलिए सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे, जिससे हो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा। 3 की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले।
4: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर, GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: दरियाए सिंध की लहरों के संग रवा दवा, यह है मोहब्बत और यकजहती का पैगाम यहाँ वहाँ। GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
1: It's 12:30 PM. This time check is brought to you by.
2: अगर खूबसूरती चाहिए तो आर्च अपनाए। आर्च ब्यूटी क्रीम, एलोवेरा और एवोकाडो सिर्फ 3 दिनों में डार्क स्पॉट्स, एक्नी एंड स्कार्स रिड्यूस करके स्किन को बनाए रेडियंट, स्पार्कलिंग और दे शानदार मिरेकल ग्लो। आर्च ब्यूटी क्रीम।
3: पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फास्फोरस की कमी का शिकार है, इसीलिए सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ। इसमें मौजूद फास्फोरस दे जड़ों की बढ़ोतरी और फैलाव में इजाफा, और सल्फर नाइट्रोजन की आफादियत को बढ़ाए, जिससे फसल को इब्तदाई मरहले से ही जरूरी गजाई अज्जा मिले। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुँचे, जिससे हो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा। 3 की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले।
4: अभी बुधोपिया जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज।
5: ओ पिता जा पिताई पिता ते वसे नूर मुझो तो
4: सिंध जो आवाज बुधंदा रहो।

0: सिंध के माथे का झूमर
1: GFM 88 नेटवर्क
2: सिंध की आवाज।
3: It's 12:45 PM. This time check is brought to you by
4: हम इस्लामिक बैंकिंग के फरोग में अपना फाल किरदार मुसलसल अदा करते रहेंगे। अस्करी बैंक।
5: पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फास्फोरस की कमी का शिकार हैं। इसीलिए सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे, जिससे हो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा। 3 की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले। पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फास्फोरस की कमी का शिकार हैं। इसीलिए सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ। इसमें मौजूद फास्फोरस दे जड़ों की बढ़ोतरी और फैलाव में इजाफा और सल्फर नाइट्रोजन की आफादियत को बढ़ाए, जिससे फसल को इब्तदाई मरहले से ही जरूरी गजाई अज्जा मिले। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे, जिससे हो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा। 3 की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले।
6: अभी बुधोपिया जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज।
7: ओ पिता जा पिताई पिता ते वसे नूर मुझो तो
6: सिंध जो आवाज बुधंदा रहो।

0: सिंध के हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: It's 1 PM. This time check is brought to you by
0: Fakiri Dex Ointment.
2: तेज आराम, मुआसर हिफाजत और काबिले एतमाद मयार।
0: हर अच्छे स्टोर से नाम लेकर तलब कीजिए।
3: अब आप सुनेंगे GFM नेटवर्क पर KTN न्यूज
4: brought to you by
5: सोना यूरिया ग्रेनुलर मिट्टी जो
6: अफगान तालिबान हुकूमत पंहिंजे सरज़मीन जे इस्तेमाल खे रोकण में नाकाम रही आहे। फोर्सेज जूं दहशतगर्दी ऐं दहशतगर्दनि जे ख़ात्मे ताईं कारवायूं जारी रहंदियूं। जमायत इस्लामी जे सर ते मुल्क में वधंदड़ महांगाई ऐं पेट्रोलियम शयुनि जे क़ीमतुनि में वाध खिलाफ़ मुख़्तलिफ़ शहरनि में शटरबंद हड़ताल। कराची जे मुख़्तलिफ़ इलाइक़नि में शटरबंद हड़ताल। कोरंगी क्रॉसिंग ते चकरियूं। अणॼातल माण्हुनि में मोटरसाइकिल्स खे बाहि ॾेई छॾी। हैदराबाद जा बि मुख़्तलिफ़ इलाइक़ा बंद। जो मीरपुर माथलो कलोई ॾेहरकी बदीन मिठी कश्मो ठठो तलार जुडो डिगड़ी ठुल कनकोट ॾेहरकी चाचरो मदेजी सकरन टनमोहन कान ऐं ॿियनि शहरनि में शटरबंद हड़ताल। लाहौर जे बि मुख़्तलिफ़ इलाइक़नि में कारोबारी मर्कज़ न खुलिया। अनारकली बाज़ार लक्ष्मी चौक गुलबर्ग ऐं ॿियनि इलाइक़नि में कारोबार बंद पयल। सीनियर वज़ीर शर्जिली नाम मेमण पारां कराची में हड़ताल दौरान भंडरा वारनि वाक़यनि जी मज़म्मत। शर्जिली नाम मेमण चयो आहे त सियासी मक़सदनि लाइ मत जोगो अमल आहे। एहतजाज जे नाले ते शहर खे जगमान बणाइण जी इजाज़त न ॾिनी वेंदी।

वी चेयरमैन मोहसिन नकवी तनकीद के रद्द कंदे चयो आहे त क्रिकेट खत्म थियण वारनि ॻाल्हियुनि खे मुनासिब न आहे। वनडे ऐं टी ट्वेंटी में टीम बहितर कारकर्दगीअ जो मुज़ाहिरो कयो आहे। टेस्ट में मसला आहिनि, फ़रिश्ता किथे बि वेठल न आहिनि। मूंसां कंहिंखे बुग्स आहे त भले तनक़ीद करे क्रिकेट खे निशानो न बणाए। लाहौर जी अदालत में अदाकारा मोमिना इक़बाल खे हिरासां करण वारे केस जी ॿुधणी NCCIMAPA साकिब ऐं संदसि ज़ाल सुमेरा खे बेॾोही करार ॾेई छॾियो। जांच आफ़ीसर पारां रिपोर्ट जांच रिपोर्ट अदालत में पेश।

खैरपुर में शहरियुनि जो मोटरसाइकिल फुर खिलाफ़ बी सेक्शन थाणे आॾो टायर साड़े एहतजाज कयो वियो। चन्ना सिंह ॻोठ जे रहवासियुनि वधंदड़ वारदातनि खिलाफ़ बी सेक्शन थाणे आॾो एहतजाजी मुज़ाहिरो कयो। शहरियुनि जो चवण आहे त मोटरसाइकिलूं फुर जूं वारदातूं मामूल बणजी वियूं आहिनि, बदमनीअ ते ज़ाब्तो आंदो वञे। फुलजी स्टेशन भरिसां 8 ॼणनि जे क़त्ल बाद पुलिस जो कचे में ऑपरेशन 6 शकी

0: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: मटियारी के हो तो आवाज भी मटियारी की है, सुनते रहो GAFM।

0: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
1: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
0: GAFM नेटवर्क,
1: सिंध की आवाज़।

हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर जीएफएम 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।

0: इट्स 1:30 PM। दिस टाइम चेक इज ब्रॉट टू यू बाय।
1: अगर खूबसूरती चाहिए तो आर्च अपनाए। आर्च ब्यूटी क्रीम, एलोवेरा और एवोकाडो सिर्फ 3 दिनों में डार्क स्पॉट्स, एक्ने एंड स्कार्स रिड्यूस करके स्किन को बनाए रेडियंट, स्पार्कलिंग और दे शानदार मिरेकल ग्लो। आर्च ब्यूटी क्रीम।
2: पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फास्फोरस की कमी का शिकार हैं, इसीलिए सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ। इसमें मौजूद फास्फोरस दे जड़ों की बढ़ोतरी और फैलाव में इजाफा और सल्फर नाइट्रोजन की आफादियत को बढ़ाए, जिससे फसल को इब्तदाई मरहले से ही जरूरी गजाई अज्जा मिले। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुँचे, जिससे हो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा। 3 की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले।

0: आप सुन रहे हैं GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: अभी बुधोपिया जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज।
2: ओ पिता जा पिताई पिता ते वसे नूर मुझो तो
1: सिंध जो आवाज बुधंदा रहो।

0: आप सुन रहे हैं GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
1: सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुँचे। 3 की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले।
2: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते।
3: अभी बुधो प्या GA हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज।
4: ओ पिता जा पिताई पिता ते वसे नूर मुझो तो
3: सिंध जो आवाज बुधंदा रहो।

0: सिंध का हर चप्पा हर गोशा
1: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा
0: GAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: It's 2 p.m. This time check is brought to you by
1: Fakiri Analgesic Cream. दर्द, सोजन, वरम फौरी खत्म. आज ही करीबी स्टोर से नाम लेकर तलब करें.
2: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN News.
3: Brought to you by
4: सोना यूरिया ग्रेनुलर मिट्टी
5: जो हिस्सो आहे अवाम जी बहितरी लाइ इंतज़ामी यूनिट ठाहिण ते गौर थी सघे थो. रुमा मुश्ताक चयो आहे त कुझु माण्हुनि जे ख़्वाब सां सिंध न विराइबी, सिंध जो अवाम हुननि जा ख़्वाब चकनाचूर करे छॾींदो. शाहिद थईम चयो आहे त सिंध ख़िलाफ़ कंहिं बि कदम खे रद्द कयूं था. वज़ीर आज़म वापार में सहूलतनि जी फराहमी लाइ ट्रेंड रजिस्ट्रेशन बोर्ड क़ाइम करण जी मंज़ूरी ॾेई छॾी आहे. बंदरगाहनि जी कारकर्दगी खे वधीक बहितर बणाइण लाइ तकिड़ा क़दम खणण जी हिदायत. वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जी सदारत हेठि वापार में सहूलतूं ॾियण बाबति इजलास. वफ़ाक़ी वज़ीरनि जी बि शिरकत. इजलास खे ब्रीफिंग ॾींदे ॿुधायो वियो आहे त पोर्ट चार्जिस में घटिताई सां बंदरगाहनि जे इस्तेमाल में घणी बहितरी आई आहे. शहबाज शरीफ चयो आहे त बंदरगाहनि ते सहूलतूं बि वधायूं वञनि. जमायत इस्लामी जे सरते मुल्क में वधंदड़ महांगाई ऐं पेट्रोलियम शयुनि जे क़ीमतनि में वाद ख़िलाफ़ मुख़्तलिफ़ शहरनि में सटरबंद हड़ताल. कराची जे मुख़्तलिफ़ इलाइक़नि में कारोबार न खुलियो. कोरंगी में चकरियूं टायरनि खे बायूं. हैदराबाद, सखर, शिकारपुर, जकमाबाद ऐं टंडोलियार में जुज़वी हड़ताल. छाछरो, मीरपुर, माथिलो, कलोई, डेरकी, बदीन, मिठी, कश्मोर, ठठो, तलार, जुडो, डिगड़ी, ठुल, कंदकोट, डेरकी, छाछरो, मदेजी, सकरन, टंड मोहम्मद खान ऐं ॿियनि शहरनि में सटरबंद हड़ताल. लाहौर जे भी मुख़्तलिफ़ इलाइक़नि में कारोबारी मर्कज़ न खुलिया. अनारकली बाज़ार, लक्ष्मी चौक, गुलबर्ग ऐं ॿियनि इलाइक़नि में कारोबार बंदि पियल. कारकुननि ऐं वापारियुनि में चकरियूं बि थियूं. वरे वज़ीर सैद मुराद अली शाह कोरंगी में हालतूं ख़राब थियण जो नोटिस वरितो. आई जी सिंध खे शहर पसंदनि ख़िलाफ़ बिना कंहिं फ़र्क़ जी कार्रवाई करण जी हिदायत. सैद मुराद अली शाह चयो आहे त कोरंगी क्रॉसिंग ते बाहि लॻाईंदड़नि खे गिरफ़्तार कयो वञे. सीनियर वज़ीर शर्जीली नामेमन पारां बि कराचीअ में हड़ताल दौरान बंदरा वारनि वाक़नि जी मज़म्मत. शर्जीली नामेमन चयो आहे त एहतजाज जे नाले ते शहर खे जरगमाल बणाइण जी इजाज़त न ॾिनी वेंदी.

खानपुर महर भरसां लुंड बिरादरी जे ॿिनि धुरियुनि में झेड़ो, हिकु ॼणो क़तल, हिकु ज़ख़्मी। गोठ सूमर बोरे भरसां पुराणे तकरार तां हथियार बंधन फायरिंग करे मौज अली लुंड खे क़तल कयो। मक़तूल जे वारसनि मूजिब अदालत हाज़िरी ते वञण दौरान हथियार बंधन हमिलो कयो, जंहिं जे नतीजे में मौज अली खे क़तल कयो वियो। जवाबदारनि खे गिरफ़्तार कयो वञे। थाणोबुला खान में सोलंगी मोहले में भित किरण सबबि निंड पयल मासूम ॿारड़ी फोत, सदमे में ॾाॾी बि हयाती विञाए वेठी। भित किरण जे नतीजे में निंड पयल 12 वरियनि जी मासूम अज़रा धीअ गाज़ी सोलंगी फोत थी वई। ॿारड़ीअ जे फोत थियण जो सदमो बर्दाश्त न कंदे संदसि ॾाॾी बि फोत थी वई। मुरीद शाख में झेड़े दौरान जख़्मी थियल पीरसन दम ॾेई छॾियो। वारसन जो लाश रखी थाणे आॾो धरणो। घोट सचल मज़ारी वासी मोहम्मद सदीन मज़ारी जे वारसन खमड़ा थाणे अॻियां लाश रखी धरणो हयो। वारसन जो चवण आहे त ज़मीनी तकरार तां बिरादरी जे माण्हुनि सां झेड़े दौरान पीरसन ज़ख़्मी थियो हो। वाके जो केस 6 जवाबदारनि ख़िलाफ़ दाख़िल थियल आहे। नोटिस वठी खेनि गिरफ़्तार कयो वञे। पुलिस मूजिब जवाबदार घर खाली करे फरार थी विया आहिनि। संदनि गिरफ़्तारी लाइ छापा हया पिया वञनि। फुलजी स्टेशन भरिसां 8 ॼणनि जे क़तल बाद पुलिस जो कचे में ऑपरेशन। 6 शकी गिरफ़्तार। गोदानो चांडियो में 8 ॼणनि जे क़तल में घुर्बल जवाबदारनि जी गिरफ़्तारीअ लाइ पुलिस ऑपरेशन कयो। पुलिस ॾुआरनि जा थाक ड्राहे पट करे छॾिया। 6 शकी माण्हुनि खे हिरासत में वरितो वियो। वधीक जांच जारी आहे।

0: मिठी भरसां पुलिस हिरासत में। मुबैना कतल थियल रसूल बख्श दर्ज केस जी बुधनी जमानत रद्द थियण ते ब पुलिस अहलकार फरार। सिपाही शबीर अहमद जुड़े जो अब्दुल करीम रहमू जमानत रद्द थियण ते फरार थिया। वारसन जो चवण आहे त बिन्ही जवाबदारन खे पुलिस कोर्ट मां पाण भजायो। सिपाही भूरो मल मेघवाड़ जमानत कराए फरार थी वियो। मीरपुर बुड़ो वेझो प्राइमरी स्कूल की जबून हाली ए सहूलत की खोट खिलाफ एहतजाज। गोठ मोहम्मद कासिम बुड़ो के स्कूल में सहूलत की खोट शागिर्दन एहतजाज कर। शागिर्दन जो चवण है त स्कूल में का भी सहूलत न है। फर्नीचर की खोट सब पट ते वेही पढ़ने ते मजबूर आयू। सहूलतू डनू वन। कंडियारो भरसा डोडा माइनर ओवरटॉप थियण लगो। पानी घर में दाखिल रहवासियों जो एहतजाज। डोडा माइनर ओवरटॉप थियण सबब कच्ची आबादी के घर में पानी दाखिल रहवासियों को रोड से मुजाहरो कर धरणो आयो। मुजाहरीन पारा डोडा माइनर जा कपर मजबूत करण घर में दाखिल थियल पानी निकाल करण जो मुतालबो कयो वियो। दादू में टिन बारन जी माओ जे अगवा जो केस दाखिल। पुलिस जा छापा बजणा गिरफ्तार। जुगताबाद पाड़े मां मुलाजिम कलीमुला जावरी की जाल रीमा मुबैना तौर अगवा। कलीमुला जावरी की फरियाद निसार पंवर मोहसिन पंवर समेत छह जन खिलाफ केस दाखिल। एस सेक्शन पुलिस चिंची रख। जवाबदार के ब घर भातियों के हिरासत में वही एस सेक्शन थाने ते मुंतकिल कर।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: मटियारी के हो तो आवाज भी मटियारी की है। सुनते रहो GAFM 91.6।
3: पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फास्फोरस की कमी का शिकार हैं। इसीलिए सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे, जिससे हो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा। 3 की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले।

हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, उधर ना रहो।

0: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
1: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
0: जीए FM नेटवर्क,
1: सिंध की आवाज।

0: अभी बुधोपिया जीए हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6 सिंध जो आवाज।
1: ओ पिता जा पिताई पिता देव से नूर मुझो तो
0: सिंध जो आवाज बुधंदा रहो।

0: शाह लतीफ का सूफी ठिकाना,
1: वादिये मेहरान, सिंध की एक और पहचान,
0: DAFM नेटवर्क,
1: सिंध की आवाज।
2: इट्स 2:30 PM। दिस टाइम चेक इज ब्रॉट टू यू बाय।
3: अगर खूबसूरती चाहिए तो आर्च अपनाएं। आर्च ब्यूटी क्रीम, एलोवेरा और एवोकाडो सिर्फ 3 दिनों में डार्क स्पॉट्स, एक्नी एंड स्कार्स रिड्यूस करके स्किन को बनाए रेडिएंट, स्पार्कलिंग और दे शानदार मिरेकल ग्लो। आर्च ब्यूटी क्रीम।
4: अभी बुधोपिया जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज।

0: किया है सिंध जी दिल। ये मटियारे एफएम 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझा मस्त मल कही मारू डुगर खां भी डाढा नियर नहीं का चीज न आहे लकी करो नहीं।

सिंध के हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुँचे। 3 की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले।
2: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा, कुरान के समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान।

हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: अपना शहर अपना घर मठियारी और मठियारी की आवाज
1: GFM 91.6।
2: It's 3 p.m. This time check is brought to you by
3: Fakiri Neem Prickly Heat Soap.
4: जल्दी एलर्जी और खारिश के लिए मुफीद है।
3: Fakiri Neem Prickly Heat Soap।
4: हर अच्छे स्टोर से नाम लेकर तलब कीजिए।
5: अब आप सुनेंगे GFM नेटवर्क पर KTN News।
6: Brought to you by
7: Sona Yulia Granular Mitty।
8: इंतजामी सबब सिंध में नवन इंतकामी यूनिटन जो मुतालबो करे रहा आहियूं। पीपी जे साहिब आगा चयो आहे त जेका जमात सिंध जे माण्हू सां गॾु बि न थी सघे उहा सिंध जे मुहाफ़िज़ कीअं थी सघे थी। ज़ुबैर जुणे जो चयो आहे त सिंध हिकु आहे, हिकु हुई ऐं हमेशह हिकु ई रहंदी। एम पी ए जावेद आराई चयो आहे त सिंध में आबाद लखे पंजाबी सिंध जे विरांगे जे ख़िलाफ़ आहिनि। सिंध जी वहादत ख़िलाफ़ कंहिं बि क़दम जी भरपूर मुखालफ़त कंदासीं। इंतकामी यूनिटन जो मतलब जेकॾहिं डिवीज़न ऐं ज़िला आहे त ॻाल्हि थी सघे थी। इंतकामी डिवीज़न जी आड़ में विरहाङो क़बूल न आहे। सिंध जो वॾो वज़ीर हिकु ई रहंदो। सूबाई वज़ीर सैद गनी चयो आहे त एम क्यू एम जा अॻवान ॿाहिरि सूबनि जी ॻाल्हि करे रहिया आहिनि। सिंध असेंबली में एम क्यू एम चवे थी त विरहाङो नथा चाहियूं। एम क्यू एम पाण मुंझारे जो शिकार आहे। जमायत इस्लामी एम क्यू एम जे रोज ते हलणु शुरू करे छॾियो आहे। एम क्यू एम कराचीअ मां ख़तम थी वई। जमायत इस्लाम खे बि अवाम रद्द करे छॾियो आहे। वज़ीर-ए-आज़म वापार में सहूलियतुनि जी फराहमीअ लाइ बोर्ड क़ाइम करण जी मंज़ूरी ॾेई छॾी आहे। बंदरगाहनि जी कारकर्दगी वधीक बहितर बणाइण लाइ तकड़ा क़दम खणण जी हिदायत। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज़ शरीफ जी सदारत हेठि वापार में सहूलियतूं ॾियण बाबति इजलास। वफ़ाक़ी वज़ीरनि जी बि शिरकत। इजलास खे ब्रीफिंग ॾींदे ॿुधायो वियो त पोर्ट चार्जिस में घटिताई सां बंदरगाहनि जे इस्तेमाल में घणी बहितरी आई आहे। शहबाज़ शरीफ चयो आहे त बंदरगाहनि ते सहूलियतूं बि वधायूं वञनि। जमायत इस्लामी जे सॾु ते मुल्क में वधंदड़ महांगाई ऐं पेट्रोलियम शयुनि जे क़ीमतुनि में वाद ख़िलाफ़ मुख़्तलिफ़ शहरनि में शटरबंद हड़ताल। कराची जे मुख़्तलिफ़ इलाइक़नि में कारोबार न खुलियो। कोरंगीअ में चकरियूं, टायरनि खे बाहियूं। हैदराबाद, सखर, शिकारपुर, जैकमाबाद ऐं टंडो अलियार में जुज़वी हड़ताल। छाछरो, मीरपुर माथिरो, कलोई, डेरकी, बदीन, मिठी, कश्मोर, ठठो, तलार, झुलो, डिगड़ी, ठुल, कंदको, डेरकी, छाछरो, मदेजी, सकरन, टंडो मोहम्मद खान ऐं ॿियनि शहरनि में शटरबंद हड़ताल। लाहौर जे मुख़्तलिफ़ इलाइक़नि में कारोबारी मर्कज़ न खुलिया। अनारकली बाज़ार, लक्ष्मी चौक, गुलबर्ग ऐं ॿियनि इलाइक़नि में कारोबार बंदि पयल। कारखाननि ऐं वापारियुनि में चकरियूं बि थियूं। वरे वज़ीर सैद मुराद अली शाह कोरंगीअ में हालतूं ख़राब थियण जो नोटिस वरितो। आईजी सिंध खे शरपसंदनि ख़िलाफ़ बिना कंहिं फ़र्क़ जी कार्रवाई करण जी हिदायत। सैद मुराद अली शाह चयो त कोरंगी क्रॉसिंग ते बाहि लॻाईंदड़नि खे गिरफ़्तार कयो वञे। सीनियर वज़ीर शर्जिलीना मेमण पारां बि कराचीअ में हड़ताल दौरान भंजड़ा वारनि वाक़िअनि जी मज़म्मत। शर्जिलीना मेमण चयो आहे त एहतजाज जे नाले ते शहर खे जर्गमाल बणाइण जी इजाज़त न ॾिनी वेंदी।

0: 3FM is brought to you by Glowing Unicorn Interstan.
1: ये ताकत किसके हर फायदा पहुंचे मिले फसल भरपूर खिले.
2: आप सुन रहे हैं
3: DAFM 88
2: नेटवर्क, सिंध की आवाज़.

0: सिंध का हर चप्पा हर गोशा
1: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा
0: GAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज,
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज,
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: कुछ।
1: अब आप FM नेटवर्क पर KTN न्यूज
2: ब्रॉट टू यू बाय
3: सोना यूरिया ग्रेनुलर मिट्टी जो मान वधाए
4: फत कंदासी इंतजामी यूनिटन जो मतलब जैकॾहिं डिवीजन ऐं ज़िला आहिनि त ॻाल्हि थी सघे थी इंतज़ामी डिवीजन जे आड़ में विरहाङो क़बूल नाहे सिंध जो वॾो वज़ीर हिक ई रहंदो सूबाई वज़ीर सैद घनी चयो आहे त MQM जा अॻवाण ॿाहिरि सूबनि जी ॻाल्हि करे रहिया आहिनि सिंध असेंबली में MQM चवे थो त विरहाङो नथा चाहियूं MQM पाण मुंझारे जो शिकार आहे जमायत इस्लामी MQM जे रोशन ते हलणु शुरू करे छॾियो आहे MQM कराचीअ मां ख़तम थी वई जमायत इस्लाम खे बि अवाम रद्द करे छॾियो आहे MQM जे नसीर अहमद मर करार ॾेई छॾियो आहे नसीर अहमद चयो आहे त तासुब जो नारो लॻाए सिंध वासियुनि खे सिंध जे पठाणनि ऐं पंजाबियुनि सां विढ़ाइण चाहिनि था क़ौम परस्ती लसानियत ऐं सूबाइत ते मरंदड़ जहनमी आहिनि सिंध जे अवाम खे ॿुधायो वियो त कराचीअ जा उर्दू ॻाल्हाईंदड़ अवां जा दुश्मन आहिनि चइनि ॾींहनि जे बहस दौरान वाज़े थी वियो आहे त केरु सिंध जे विरहाङे जे हक़ में आहे ऐं केरु मुख़ालफ़त में आहे सिंध हुकूमत जी ख़राब हुकुमरानीअ ते तनक़ीद ज़रूरी थी आहे

वज़ीर-ए-आज़म वापार में सहूलतनि जी फराहमीअ लाइ बोर्ड क़ाइम करण जी मंज़ूरी ॾेई छॾी। बंदरगाहनि जी कारकर्दगी वधीक बहितर बणाइण लाइ तकड़ा क़दम खणी आज़म शरारत हेठि वापार में सहूलतूं ॾियण बाबति इजलास। वफ़ाक़ी वज़ीरनि जी बि शिरकत। इजलास खे ब्रीफिंग ॾींदे ॿुधायो वियो त पोर्ट चार्जिस में घटाई सां बंदरगाहनि जे इस्तेमाल में घणी बहितरी आई आहे। शहबाज शरीफ़ चयो आहे त बंदरगाहनि ते सहूलतूं बि वधायूं वञनि। जमायत इस्लामी जे सॾ ते मुल्क में वधंदड़ महांगाई ऐं पेट्रोलियम शयुनि जे क़ीमतनि में वाद ख़िलाफ़ मुख़्तलिफ़ शहरनि में शटरबंद हड़ताल। कराची जे मुख़्तलिफ़ इलाइक़नि में कारोबार न खुलियो। कोरंगी में चकरियूं, टायरनि खे बाहियूं। हैदराबाद, सखर, शिकारपुर, जैकमाबाद ऐं टंडो अलियार में जुज़ी हड़ताल। छाछरो, मीरपुर, माथेलो, कलोही, डेरकी, बदीन, मिठी, कश्मोर, ठठो, तलार, झुडो, डिगड़ी, ठुल, कंदकोट, डेरकी, छाछरो, मदेजी, सकरन, टंडो, मोमन जान ऐं ॿियनि शहरनि में शटरबंद हड़ताल। लाहौर जे बि मुख़्तलिफ़ इलाइक़नि में कारोबारी मर्कज़ न खुलिया। अनारकली बाज़ार, लक्ष्मी चौक, गुलबर्ग ऐं ॿियनि इलाइक़नि में कारोबार बंदि कयल। कारकुननि ऐं वापारियुनि में चकरियूं बि थियूं। वॾे वज़ीर सैद मुराद अली शाह कोरंगीअ में हालतूं ख़राब थियण जो नोटिस वरितो। आई जी सिंध खे शरपसंदनि ख़िलाफ़ बिना कंहिं फ़र्क़ जे कार्रवाई करण जी हिदायत। सैद मुराद अली शाह चयो त कोरंगी क्रॉसिंग ते बाहि लॻाईंदड़नि ॾो वञे। सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम मेमण पारां बि कराचीअ में हड़ताल दौरान भंजड़ा वारनि वाक्यनि जी मज़म्मत। शर्जील इनाम मेमण चयो आहे त एहतजाज जे नाले ते शहर खे जरगमाल बणाइण जी इजाज़त न ॾिनी वेंदी। क़ौमी असेंबली जे घरू मामलनि बाबति स्टैंडिंग कमेटीअ जो इजलास। इस्लामाबाद लाइ मकानी हुकूमतनि वारे कानून 2026 जी मंज़ूरी। पीपल्स पार्टी पारां मुख़ालिफ़त। कादिर पटेल चयो त इस्लामाबाद सूबो थियो त कहिड़ो निज़ाम हूंदो। मकानी चूंड त इस्लामाबाद ऐं पंजाब में थियणी नाहे। दिल ते इख़्तिलाफ़ी नोट ॾिनो वेंदो। मुल्कती वज़ीर तलाल चौधरी चयो त इस्लामाबाद में थाणा विकिरो नाहिनि थींदा, न ई कब्ज़ा कया वेंदा आहिनि। बरसाति जो पाणी बि इस्लामाबाद जल्द निकिरी वियो हो। कारकर्दगीअ ते ॻाल्हि थी सघे थी।

0: हदफ ॾेई छॾियो। मुराद अली शाह चयो आहे त अवाम खे मयारी ऐं जदीद तिबी सहूलियतूं ॾियण हुकूमत जी तरजीह आहे। ठठे में सिंध हुकूमत जे आबादगारनि लाइ सब्सिडी प्रोग्राम में ठठो बंदर ऐं जाल साज़ी में करोड़े रूपए तस्दीक। ज़राइत खाते पारां जारी कयल आबादगारनि जी लिस्ट ते तालके केटी बंदर जे एतराज़ वारे छॾिया। मुख़्तियार खां डिप्टी डायरेक्टर एग्रीकल्चर एक्शन खे खुलियल ख़त में ॼाणायो वियो त लिस्ट में ॼाणायल माण्हू केटी बंदर जा न आहिनि। मलीर सिटी जे इलाइक़े गाज़ी बिरोही ॻोठ में क़ाइम मलीर मॉडल सेकेंडरी स्कूल ते मुबैना कब्ज़ो ख़ानगी माण्हुनि स्कूल खे तालो लॻाए छॾियो। तारा टोड़ण जी कोशिश सां जहिड़ो शागिर्दनि ऐं शागिर्दनि जो एहतजाज। डीईओ जो चवण आहे त कब्ज़ो करे वेठल माण्हू हथियार खणी आया हुआ। स्कूल ज़मीन जी मालिकी जी दावा कंदड़ जावेद बिरोही त इमारत असांजी आहे, मुंहिंजा बाबा मसुवाड़ ते ॾिनी हुई, हाणे सरकार असां सरकार खे इमारत न ॾींदासीं। मलीर सिटी पुलिस जे मुबैना तशद में मारिजी वियल नौजवान इरशाद बलोच जे वारसनि ऐं वकीलनि जो एहतजाज। मलीर कोर्ट आॾो मुज़ाहिरो करे धरणो हयो। SHO मलीर सिटी रियाज भुट्टो खे गिरफ़्तार करे केस दाख़िल करण जो मुतालबो। नौजवान जे वारसनि चयो त पुलिस बेगुनाह नौजवान खे गिरफ़्तार करे तशद करण बाद क़तल कयो आहे। इंसाफ़ कयो वञे।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: मटियारी के हो तो आवाज भी मटियारी की है, सुनते रहो GAFM 91.6 सिंध की गति का पैगाम यहाँ वहाँ। GAFM नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: अभी बुधोपिया जीए हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6 सिंधु जो आवाज
1: ओ पिता जा पिताई पिता ते वसे नूर मुझो तो
0: सिंधु जो आवाज बुधंदा रहो।
2: अजरक के रंगों से रंगी,
3: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज, आवाज
3: जीएफएम 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जीए हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6 सिंध जो आवाज, बुधंदा रहो।

0: अभी बुधोपिया जीए हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6 सिंधु जो आवाज।
1: ओ पिता जा पिताई पिता देव से नूर मुझो तो
0: सिंधु जो आवाज बुधंदा रहो।

0: किया है सिंध जी दिल। ये मटियारे FM 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझा मस्त मलंग ही मारू डुंगर खा भी जाधा नियर नहीं का चीज न आहे हकी कड़ो नहीं।
2: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 मिंटन ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते।

0: अभी बुधो प्यार जीए हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6 सिंध जो आवाज।
1: ओ पिता जा पिताई पिता ते वसे नूर मुझो तो
0: सिंध जो आवाज बुधंदा रहो।

0: किया है सिंध जी दिल। ये मटियारे एफएम 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझा मस्त मल गही मारू सुगर खा भी जाधा नियर नहीं का चीज में आहे सकी करो लगी।

0: अभी बुधोपिया जीए हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6 सिंधु जो आवाज
1: ओ पिता जा पिताई पिता ते वसे नूर मुझो तो
0: सिंधु जो आवाज बुधंदा रहो।

0: बुलेटिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: अभी बुधोपिया GA हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज।
2: ओ पिता जा पिताई पिता ते वसे नूर मुझो तो
1: सिंध जो आवाज बुधंदा रहो।
3: It's 11:30 AM check is brought to you by
4: अगर खूबसूरती चाहिए तो आर्च अपनाएं। आर्च ब्यूटी क्रीम एलोवेरा और एवोकाडो सिर्फ 3 दिनों में डार्क स्पॉट्स एक्नी एंड स्कार्स रिड्यूस करके स्किन को बनाए रेडियंट स्पार्कलिंग और दे शानदार मिरेकल ग्लो। आर्च ब्यूटी क्रीम।
5: पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फास्फोरस की कमी का शिकार है, इसीलिए सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ। इसमें मौजूद फास्फोरस दे जड़ों की बढ़ोतरी और फैलाव में इजाफा और सल्फर नाइट्रोजन की आफादियत को बढ़ाए, जिससे फसल को इब्तदाई मरहले से ही जरूरी गजाई अज्जा मिले। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुँचे।

हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फास्फोरस की कमी का शिकार हैं। इसीलिए सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे, जिससे हो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा। 3 की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, उधर ना रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, उधरदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, उधर
1: है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज,
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, उधरदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खिते की बनी है आवाज।
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, उधर दारा हो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
1: GA FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बुदंदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, उतरदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6, सिंध जो आवाज, उधंदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
1: जीए एफएम नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6 सिंध जो आवाज, उतरदा रहो उतरदा रहो।
1: पूरा है लाल शहबाज,
2: उसी खत्ते की बस,
1: जीए एफएम नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बुदंदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज,
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, उधर ना रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
1: जीए FM नेटवर्क।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बुदंदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज,
1: GA FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जीए हैदराबाद 1.6 सिंध जो आवाज, उधरदार रहो।
1: जिस धरती से जो अंदर लाल शहबाज
2: खत्ते की बस
1: नेटवर्क।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, उधर रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जीए हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6, सिंध जो आवाज, उधरदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खिते की बनी है आवाज,
1: जीए एफएम नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बदलता रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, उधर ना रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज,
1: जीए FM नेटवर्क
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बुदंदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
1: GA FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, उधर ना रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, उधर रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज,
1: जीए FM नेटवर्क
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बदलता रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
1: GA FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बदलदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6 सिंध जो आवाज, उधरदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
1: जीए एफएम नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जीए हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6, सिंध जो आवाज, उधर ना रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खिते की बनी है आवाज,
1: जीए एफएम नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बदलता रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।
0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बदलता रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, बुदंदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज,
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, उधर ना रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बुदंदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6 सिंध जो आवाज, बदलता रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
1: जीए एफएम नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, उधर रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बुदंदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, बदलता रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, उधर दारो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज,
1: जीए FM नेटवर्क
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, उधर दारो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, उधर दारा।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज,
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6, सिंध जो आवाज, बुधंदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
1: जीए एफएम नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, बुदंदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज,
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बुदंदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज,
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, बुदंदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज,
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, उधरदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज,
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज
1: brought to you by
2: सोना यूरिया ग्रेनुलर मिट्टी जो माँ
3: सिंध प्लेड अ पायनियरिंग रोल इन द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान एंड द सिंध लेजिस्लेटिव असेंबली वाज द फर्स्ट प्रोविंशियल लेजिस्लेचर ऑफ ब्रिटिश इंडिया टू अडॉप्ट अ रेजोल्यूशन इन सपोर्ट ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पाकिस्तान 1943 नाउ देयरफॉर दिस हाउस हियरबाय फर्स्ट अनइक्वली rejects any proposal, plan, or scheme or constitutional arrangements by whatever name or description which seeks to divide Sindh, alter its existing territorial limits, create any new province out of this territory. After me, ye kehna zaruri hai ki Sindh is one and shall remain one.
4: Now I put the resolution to the House. Those who are for the resolution may say aye. Those who are against it may say no. The ayes have it, the ayes have it, the ayes have it, and the resolution is passed unanimously.
5: सिंध एक है ऐं हमेशा एक रहंदी सिंध असेंबली सिंध जी वैदर खिलाफ़ इन साज़िश ऐं धरती जे इम्कानी विरहाङे खिलाफ़ हिकु भेरो ॿीहर यकराउ ठहराउ मंज़ूर करे वरितो सिंध असेंबली में नवनि सूबनि ऐं इंतज़ामी यूनिट्स बाबति रिथ ते बहस मुकमल थियण बाद पीपल्स पार्टी MPA निसार खोड़ो सिंध जे इम्कानी विरहाङे खिलाफ़ ठहराउ पेश कयो जेको ऐवान यकराए मंज़ूर करे वरितो ठहराउ में चयो वियो आहे त मुल्क में नवनि सूबनि ऐं इंतज़ामी यूनिटनि जे हवाले सां नई सिर बहस शुरू थी वियो आहे अहिड़ियुनि तजवीज़नि जो असर सिंध ते पइजी सघे थो सिंध हिकु तारीख़ी तहज़ीबी ऐं आइनी सुञाणप रखंदड़ ख़ितो आहे सिंध जी सुञाणप ऐं इलाक़ाई तसलसुल सदियूं पुराणो आहे सिंध अणटुट सूबे जी हैसियत सां पाकिस्तान में शमूलियत अख़्तियार कई हुई ही ऐवान हिकु भेरो ॿीहर सिंध जे इम्कानी विरहाङे खे सख़्तीअ सां रद्द करे थो ये सारो मत खोड़े पारां पेश कयल ठहराउ जे मतन में चयो वियो आहे त सिंध असेंबली 6 भेरा ठहराउ मंज़ूर करे सिंध जे इम्कानी विरहाङे खे रद्द करे चुकी आहे आइन में वाज़े आहे त सूबे जूं हदूं तब्दील करण लाइ लाॻापियल असेंबली मां ठहराउ मंज़ूर थियण ज़रूरी आहे सिंध मां कंहिं बि ज़िले डिवीजन या इलाइक़े खे धार करण या वफ़ाक़ी निज़ाम जे मातहत रखण खे रद्द करे थो सूबाई असेंबली सिंध जी हदनि में कंहिं बि क़िस्म जी तब्दीली जी इजाज़त नथी ॾे ऐवान वाज़े लफ़्ज़नि में ऐलान करे थो त सिंध हिकु आहे ऐं हमेशा हिकु ई रहंदी
6: इधर आज अभी अनफॉर्चुनेटली लीडर ऑफ द ऑपोजिशन लंबी चौड़ी तकरीर झाड़ के चले गए जिसका मतलब कुछ नहीं था एंड ऑफ द डे मैं कहना नहीं चाहता लेकिन मुझे और कोई लफ्ज आता नहीं उर्दू मेरी कमजोर है इतना बड़ा दोगलापना मैंने नहीं देखा कभी मुझे और लफ्ज नहीं आता अगर कोई और लफ्ज हो शहीद या कोई और मुझे बता सके कि इसका दोगले का और क्या लफ्ज है कि एक तरफ कहते हैं हमें सिंध की डिवीजन मंजूर नहीं और उसके बाद जो उन्होंने पढ़ी थी मैंने तो इसलिए कि उन्होंने दिखाई थी हमें एक मुहिम चली कि कराची को सिंध से अलग किया जाए निसार खोड़ो इस बहस को सही जगह पे लेके आया जहां पे ये डिस्कस होनी है और उन लोगों के मुंह बंद करने के लिए जो कि ऐसी जगहों पर ये डिस्कशन करें जहां इनकी कोई जरूरत नहीं है।

0: टेलीविजन शोज पे इसकी जरूरत नहीं, आप करें। फैसला इधर होना है, फैसला इधर हो चुका है। बेवकूफ बनाना सीएम का काम है। अच्छा, अब मसला ये है कि लोग इनसे बेवकूफ नहीं बन रहे, लोग इनको वोट नहीं दे रहे, तब किसी और को राजी करने के लिए सारा काम कर रहे हैं।
1: एमकेएम वारा सिंध जो विराको नथा चाहिन ताइवान मां भजी छो विया। नवन सूबन जो फैसलो टीवी प्रोग्रामन जरिए न पर असेंबली में थियणो आहे। खबर पइजी वई त कहिड़ा माण्हू सिंध जे विरागे जे खिलाफ़ आहिनि ऐं कंहिं जो बिटो मयार आहे। टीवी विकणी बंदूक खणण जी ॻाल्हि कंदड़ लीडर ख़बर नाहे हाणे किथे वेठो आहे। सिंध जी वहदत ते बिटो मयार क़बूल नथो करे सघिजे। ख़बरदार करियूं था त क़ौमी असेंबली बि सिंध जे विरागे जी ॻाल्हि नथी करे सघे। वॾे वज़ीर सैयद मुराद अली शाह जो सिंध असेंबली में ख़िताब। वॾे वज़ीर चयो त लाहौर में वफ़ाक़ी वज़ीर निज़ाम तबाह थियण जो चयो त बिज़नेसमैन ताड़ियूं वॼायूं। छा हाणे अरबपति बिज़नेसमैन नवनि सूबनि जो फ़ैसिलो कंदा? समझ में न पियो अचे सिंध असेंबली में मौजूद मुबैना पीटीआई वारा हिदायतूं कंहिंखां वठी रहिया आहिनि। पीटीआई वारा असांजे साम्हूं अची चवंदा हुआ उहे सिंध जे विरागे जे ख़िलाफ़ आहिनि।
0: लीडरशिप की कही हुई बातें, लिखी हुई बातें, साइन की भी बात है, आप उनकी भी बात नहीं मानते हो। ये वाले बंदे नहीं चलने वाले भाई जी, ये कैसे पुरानी हो गई है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की। कोई नई चीज लाओ, नई चीज बेचारे ला नहीं सकते। तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान, हम सूबे की तकसीम नहीं चाहते और एहतजाज है। गवर्नेंस को लाती है, छुपाती है ताकि सिंध के लोगों को बेवकूफ बनाया जा सके। हम ऐसी करारदाद को नहीं मानते और इसको अपोज करो।
2: अली खुर्शीद जी, बहुत शुक्रिया स्पीकर साहब। अली मोबाइल साहब, अली साहब, अली खुर्शीद जी साहब,
3: नहीं सर, नहीं सर,
2: सर नो मोर डिस्कशन।
3: अली खुर्शीद जी साहब,
2: नो मोर डिस्कशन।
3: ये वॉकआउट ना करें, ये वॉकआउट ना करें, वॉकआउट ना करें। इधर
1: सिंध असेंबली अॻे पंज फेरा ठहराउ सिंध जो विरागो रद रगड़े चुकी आहे त पोइ रिथ ते बहस ई न थियण खपंदो हो, पर पीपी वटि पंहिंजी नाकामी लिकाइण लाइ ॿियो कुझ न हो। सदन कारकरदगी ज़ीरो आहे, ध्यानु हटाइण लाइ इशू खणी आई आहे। अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी जो सिंध असेंबली में ख़िताब। अली खुर्शीदी चयो त ही हरू भरू पया हिक ॿिए खे मुबारकूं ॾियनि। असां सिंध जो विरागो नथा चाहियूं, कंहिंखां रसीदूं वठण जी ज़रूरत नाहे त असीं सिंध सां केतिरी मोहबत करियूं था।
0: क्योंकि ये उस तारीखी दिन पे ये वोट में शामिल नहीं होना चाहते और ये वॉकआउट का बहाना बना के असेंबली का फ्लोर छोड़ के भाग रहे हैं। कि किस तरीके से असेंबली का फ्लोर छोड़ के एमकेएम भाग रही है इस तारीखी मौके पे, इस करारदाद का हिस्सा नहीं बन सकती, नहीं बनना चाहिए। जिस तरीके से आज पीटीआई ने बायकॉट किया है,
3: आज ये चीज वाजे हो गई है,
0: और सिंध के सामने मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट एक्सपोज हो गई, और वाइट पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी है, वाइट पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी जो सिंध के आवाम के साथ खड़ी है और बढ़ते दम तक खड़ी रहेगी
3: इंशाल्लाह।
4: इस बात के हम सिंध को डिवाइड नहीं होने देंगे, हम सिंध नहीं बेचेंगे। ये धरती मां हमारी है, हम इसकी हिफाजत करेंगे। ऐ मेरे मेम्बरान, बेनजीर भुट्टो को क्या जवाब दोगे? कयामत के दिन क्या वो हमें गरेबान से पूछेगी नहीं, हमसे सवाल नहीं उठाएगी कि मैंने तो अपनी जिंदगी दे दी, मेरे वालिद ने अपनी जिंदगी दे दी, तुमने क्या किया, तुमने सिंध को क्या किया, तुमने सिंध के साथ तुमने कैसे भेजा सिंध को?
5: सिंध के लोगों का रोमांस है इस मिट्टी के साथ, सिंध के लोगों को मोहब्बत है सिंध लफ्ज के साथ, और सिंध के लोग वो कहते हैं कि जी हमारा जीना मरना, हमारी हर चीज जो है ना वो सिंध सुबह है। और ये जितना सिंध का शहरी अपने प्यारे वतन पाकिस्तान से मोहब्बत करता है, उतनी ही मोहब्बत वो इस सूबे सिंध से भी है। पाकिस्तान हमारे लिए रेड लाइन है, पाकिस्तान की वैधानिक हमारे लिए रेड लाइन है, पाकिस्तान हम सबकी कमजोरी है। इसी तरीके से सूबे सिंध भी हमारे लिए कमजोरी, सूबे सिंध से भी हमारी वही मोहब्बत है और वही अकीदत है। और मैंने कहा हमारे सिंध के तमाम लोगों से उसी प्रश्न से, मैंने कहा आप बेफिक्र हो जाएं, आपके मुंतखब नुमाइंदे असेंबली में बैठे हुए हैं, वो मर जाएंगे, कभी भी सिंध पे सौदेबाजी नहीं करेंगे।
0: सिंध की तस्लीम की बात होगी, वजारत को लात मारेंगे, मेंबरशिप को लात मारेंगे, सियासत को लात मारेंगे, पढ़ा तो ठीक।

0: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
1: मटियारी के हो तो आवाज भी मटियारी की है, सुनते रहो जीए एफएम 91.6।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बुधंदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज,
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, उधर ना रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज,
1: जीए FM नेटवर्क
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, उधरदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज,
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, उधर ना रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज,
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज,
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, ॿुधंदा रहो।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद नाइट, सिंध जो आवाज, उधरदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज,
1: जीए एफएम नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।
0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जीए हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6, सिंध जो आवाज, उधरदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज,
1: जीए एफएम नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: गीत जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बदलता रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
1: GA FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, उधर दारो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, उधर दारो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज,
1: जीए FM नेटवर्क
2: सिंध की आवाज।

0: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज
1: ब्रॉट टू यू बाय
2: सोना यूरिया ग्रेनुलर मिट्टी जो मान बधाई।
3: आपने में ये कहना जरूरी है कि सिंह इज वन एंड शैल रिमेन वन।
4: Those who are against

सुभाणे इंतज़ामी यूनिट एमपीए खिलाफ़ ठहराउ पेश कराए मंज़ूर करे ठहराउ में मुल्क के हवाले से नई सेर बहस शुरू थी वही है। अहिड़ी तजवीज़नि जो असर सिंध ते पइजी सघे थो। सिंध एक तारीखी तहज़ीबी तसलसल सदियूं सिंध अणटुट सूबो।

0: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
1: मटियारी के हो तो आवाज भी मटियारी की है, सुनते रहो जीए एफएम 91.6।
2: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
3: उसी खिते की बनी है आवाज।
2: जीए एफएम नेटवर्क,
3: सिंध की आवाज़।